0: आई जस्ट डोंट गेट यू आरव. जो तुमने आज किया है उसकी वजह से हरी आजाद होगा और वसुधा तुमसे अलग होगी. फिर भी तुम इतने खुश हो?
1: सच्चे प्यार की कहानी का कोई अंत नहीं होता पूर्वा. मेरे दिल से आवाज उठी है कि पूरी कायनात की ताकत मिलकर भी हम दोनों को अलग नहीं कर सकती. हमें मिलना है, तुम देखना एक ना एक दिन हम दोनों जरूर मिलेंगे.
0: आई डोंट गेट यू मैन.
1: अपूर्वा गाड़ी रोक.
0: क्या हुआ?
1: स्टॉप द कार प्लीज.
0: व्हाट हैपेंड?
1: खुशबू,